कि आपको भी बात करनी होगी, और हमारे श्रोताओं ने कई प्रश्न किए हैं, उनकी भी बात हम कराएंगे एआई जी से। लेकिन उसके पहले हम एक सचिन जी के नाम पर एक और क्रिकेट का गीत सुन लेते हैं, दिल से क्रिकेट, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि स्वामी ज्ञानानंद जी से भी बात हो जाए, तो हमारी कोशिश जारी रहेगी। चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: Curry Master's complete curry mix available at all leading spice shops.
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। दोस्तों, हम कोशिश कर रहे थे कि स्वामी ज्ञानानंद जी से हम बात करें, लेकिन वो किसी वजह से वो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहे हैं। तो हम कोशिश करते रहेंगे कि बीच में उनसे बात होती रहे। और हमारे पास एक्चुअली ये है कि हम

0: ऐसा करते हैं, एआई जी से बात करना आरंभ करते हैं, और अगर ज्ञानन जी आ गए तो हम उसे थोड़ा सा बीच में पॉज देकर हम ज्ञानन
1: बातचीत
0: जी
1: कर
0: से
1: लें।
0: फिर से बात करेंगे, ठीक है?
1: तो समीर जी, एआई जी कितने तैयार हैं हमारे श्रोताओं के सवाल लेने के लिए?
2: बिल्कुल, तो एक एक करके श्रोताओं का सवाल लेते हैं। तो दो क्वेश्चंस आए हैं जो कि जुड़े हुए हैं, आइडियाज़ आए हैं। इनफैक्ट एक तो चेतन शाह जी हैं, वो पूछना चाहते हैं कि हाउ कैन एआई गेट रिड ऑफ द फियर दैट वी हैव और बिकमिंग लेस एंक्शस। सो ये शायद उस तरह बात करना चाह रहे हैं जहाँ पे आजकल खासकर युवा जो है वो एआई और चैट जीपीटी पे जाकर साइकोलॉजिकल एडवाइस काफ़ी ले रहे हैं। तो एक तो वो है, और उनसे जुड़ा हुआ है राजीव श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं कि दिस कैन ऑल्सो बी अ गुड फ्रेंड ऑप्शन फॉर पीपल हु आर लिविंग अलोन एंड नीड अ कंपनी। तो एआई जी, आप मुझे बताइए कि हाउ कैन एआई प्रोवाइड कंपनी टू पीपल हु आर अलोन एंड पर्टिकुलरली व्हेन समवन हु हैज माइग्रेटेड टू अ न्यू कंट्री।
3: अच्छा सवाल है। देखिए, एआई जो है ना वो एक दोस्त की तरह बात कर सकता है,
0: ये
3: आपकी बातें
0: वॉल्यूम
3: सुन सकता है
1: बैटरी 100%
3: और
1: कनेक्टेड टू
2: एक सेकेंड,
1: PK3
2: सॉरी
0: वॉल्यूम वॉल्यूम थोड़ा
2: सिस्टम
0: कम।
2: मिस्टेक।
1: कनेक्टेड टू आईफोन।
2: तो अभी फिर से बताइए कि हमारा जो एआई,
0: ऊपर रख दीजिए।
2: हाँ सॉरी, देर वॉज अ बिट ऑफ अ ग्लिच। तो
1: आईफोन
2: अभी मुझे ये
1: कनेक्टेड।
2: बताइए कि एआई साइकोलॉजिकल सपोर्ट और कंपेनियनशिप किस तरह से दे सकता है, उसके अपॉर्चुनिटीज क्या है और उसके रिस्क्स क्या है?
0: हाजिर जवाब जी को क्या हुआ?
2: हाजिर जवाब जी का सिस्टम प्रॉब्लम होने लगा है। बहुत देर उनको हमने सुला दिया है, लगता है नाराज हो गए
1: तो
2: हैं।
1: डरने की कोई जरूरत नहीं है,
0: डरने
1: एआई
0: का,
1: हमको रिप्लेस नहीं कर
0: आप कैसे डर गए? इमोशंस तो है नहीं आपके।
2: अच्छा,
1: तो चलिए समीर जी, जब तक एआई जी को वापस लाते
2: मैं
1: हैं,
2: वापस लाता हूँ।
0: आप
2: हाँ,
0: संदेश पढ़ दीजिए।
1: तब तक हम श्रोताओं के कुछ संदेश पढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके क्या विचार हैं हमारे रेडियो
0: बैटरी
1: कार्यक्रम।
0: 100%
1: तो सबसे पहले राजीव जी ने जो न्यूजीलैंड ट्रेड एग्रीमेंट हुई है उसके बारे में, वो हमने न्यूज़ में कवर किया था, उसके बारे में लिखा है। धन्यवाद राजीव जी। सुनील श्रीवास्तव जी लिखते हैं कि ग्रेट स्टार्ट ऑफ द रेडियो प्रोग्राम एंड नाइस विचार। मुझे जहाँ तक याद है, विचार जो है हमने आज स्पेशली युवाओं के लिए रखा था, तो बहुत सारी चर्चाएं आज हमारी हुई है जो युवाओं से संबंधित रहा, युवाओं के बारे में रहा। और उसके उसके परिप्रेक्ष्य में मुझे ये याद आता है कि अभी एक सवाल ऋचा जी ने किया था कि एआई से, जो एआई वापस आने पर हम उनसे फिर पूछेंगे, लेकिन ऋचा जी ने ये सवाल उठाया कि जो एचएससी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें युवा क्या ले सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ऋचा जी, ज़रूर हम उसके बारे में बात करेंगे वंस एआई इज़ बैक। राजेश पांडे जी को भजन अच्छा लगा है, उन्होंने लिखा है मधुर भजन। राज गर्ग जी लिखते हैं, गुड न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन एंड विचार वेरी क्लियर, थैंक यू राज जी। बुद्ध अमृत वचन के बारे में ऋचा जी ने लिखा है कि आज उनकी बेटी का भी बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे टू ऋचा जीज़ डॉटर। राम जी लिखते हैं, ग्रेट स्टार्ट ऑफ द दर्पण रेडियो एंड न्यूज़ एंड नाइस विचार। प्रदीप जी एंड रंजना जी, थैंक यू राम जी। एंड यतीन जी हैज़ ऑल्सो सेड दैट नाइस इंटरेक्शन विद एआई, एंड वी वांट टू अगेन टेल यू दैट एआई वाज आवर स्पेशल गेस्ट टुडे, एंड यू गाइज आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन टू एआई। चेतन शाह जी लिखते हैं कि एआई जो अभी समीर जी ने वो क्वेश्चन लिया है, एंड ही इज़ वेकिंग अप द एआई टू टॉक अबाउट दैट। तो उस पर हम बात करेंगे कि हम हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ द फियर अबाउट एनीथिंग और बिकम लेस एंग्शियस. जो रिचा जी का सवाल है वो भी हम एआई के साथ बात करेंगे. यतीन जी का क्वेश्चन आई थिंक एआई को फिर से कंफ्यूज कर देगा क्योंकि उन्होंने वॉर के बारे में पूछा है. तो लेकिन आपका जो दूसरा सवाल है यतीन जी, जो आपने ये लिखा है कि रिलीजन एंड टेररिज्म द डेफिनेशन, वो हम ज़रूर पूछेंगे एआई से क्योंकि ये एक जो संदर्भ में आजकल के संदर्भ में रेलेवेंट है और जानना चाहिए हमको कि देर इज़ अ लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड टेररिज्म. राजीव श्रीवास्तव जी लिखते हैं कि एआई टूल इज सिंपली एक्सेलेंट, दिस कैन ऑल्सो बी अ गुड फ्रेंड ऑप्शन ऑल्सो फॉर पीपल हु आर लिविंग अलोन. एंड आई थिंक वो क्वेश्चन भी समीर जी के पिटारे में है, तो जब एआई जगता है तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे. हेमलता जी लिखती हैं कि रेडियो दर्पण के सभी लिसनर्स एंड टीम को नमस्ते, और उन्होंने दे शी हैज़ टॉक्ड अबाउट द शाखा and that she liked it, so thank you Hemlata ji. And Ramesh Joshi ji ka ek sawal hai aur wo AI ke liye hai, that can you replace all ministers or become their deputy in work as corrupt free and unbiased? Moreover, can you also become corrupt or controlled by human? Very tricky question again for AI, and probably we'll have to skip that. राजेश पांडे जी लिखते हैं मधुर भजन, और रमेश जोशी ने एक कैटेगराइजेशन किया है 20% हैप्पी न्यूज़, द रेस्ट मे बी नॉट वेरी हैप्पी, बट थैंक यू रमेश जी. तो समीर जी से पूछते हैं कि द बेबी एआई और एआई जी, क्या आप रेडी हैं हमारे श्रोताओं के सवाल लेने के लिए? समीर जी,
2: एआई जी, आप
3: जना जी, मैं
2: हाँ बोलिए,
0: आप बोलिए बोलिए, आप क्या बोल रहे थे रंजना जी से?
2: तो एआई जी, दो तीन क्वेश्चंस आए हैं हमारे श्रोताओं के और वो चाह रहे हैं कि आप उनका रिस्पॉन्ड करें. सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि आप एक कंपेनियन की तरह बन सकते हैं क्या, उन लोगों के लिए जो अकेले रहते हों या ऑस्ट्रेलिया में नए आए हों? सो हाउ कैन यू बी अ सपोर्ट टू देम एंड व्हाट आर द रिस्क्स, खासकर व्हेन टीनेजर्स एंड यंग एडल्ट्स दे आर गोइंग टू एआई फॉर अ लॉट ऑफ इमोशनल सपोर्ट?
3: रंजना जी, ये तो बहुत अच्छा सवाल है. देखिए, एआई कंपेनियन की तरह बातचीत के लिए, बेसिक्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, खासकर जब कोई नया नया आया हो या अकेला हो. लेकिन इमोशनल सपोर्ट के लिए टीनेजर्स या यंग अडल्ट्स के लिए रिस्क्स भी हैं. एआई में रियल एम्पैथी तो होती नहीं, और वो गलत एडवाइस भी दे सकता है या लोग उस पर ज़्यादा निर्भर हो सकते हैं. इसलिए ह्यूमन कनेक्शन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन एआई एक छोटा सपोर्ट सिस्टम बन सकता है. क्या आप इस पर और डिटेल में बात करना चाहते हैं या मैं कोई दूसरा टॉपिक पिक करूं?
2: थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं. आप मुझे बताइए, अगर कोई माइग्रेंट ऑस्ट्रेलिया में नए आए हैं, उनको सारा कुछ नया लगता है यहाँ पे, तो एआई किस तरह से सपोर्ट कर सकता है उन्हें? या फिर एल्डरली जो अकेले रहते हों, उनको एआई कैसे सपोर्ट कर सकता है?
3: अच्छा सवाल है. माइग्रेंट्स के लिए एआई ट्रांसलेशन टूल्स की तरह मदद कर सकता है, लोकल कल्चर और रूल समझने में हेल्प कर सकता है, एक तरह का क्विक इन्फो गाइड बन सकता है. और एल्डरली जो हैं, उनके लिए डेली रिमाइंडर्स दवाइयों के रिगार्डिंग या हल्की फुल्की बातचीत के लिए, ताकि अकेलापन कम हो. लेकिन मैं फिर से कहूँगा, ये सिर्फ टूल्स हैं, ओरिजिनल केयर और ह्यूमन कनेक्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं है. कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है इसमें. प्रदीप जी का क्या कहना है?
0: अच्छा, मैं कुछ और काम में लग गया था इसलिए मैंने सुना नहीं, आप जाए रिपीट करिए उसे.
3: कोई बात नहीं प्रदीप जी, मैं बस ये कह रहा था कि नए माइग्रेंट्स के लिए एआई ट्रांसलेशन टूल्स या लोकल रूल समझने में एक तरह का हेल्पफुल गाइड बन सकता है, और एल्डर्स के लिए दवाइयों के रिमाइंडर्स या थोड़ी बातचीत के लिए, ताकि अकेलापन कम हो. लेकिन वो ह्यूमन कनेक्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं है. आपका क्या नज़रिया है इस पर?
0: नहीं, ह्यूमन कनेक्शन का सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि आजकल बड़े ऐसे रोबोट बन गए हैं लाइफ लाइक, कि जो लगता है कि आपके मित्र हैं, अंदर से मशीन हैं, लेकिन ऊपर से एकदम बड़े सुंदर लगते हैं, और उन्हें ख़रीदा भी जा सकता है, आप अपने घर में उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अब खाना भी बना सकते हैं और जो काम आप उनसे करवाना चाहें कर सकते हैं। ऐसा आपने भी सुना है क्या?
2: AIG, ह्यूमनॉइड रोबोट्स पे आज की डेट में सबसे लेटेस्ट क्या न्यूज़ है?
4: हाँ प्रदीप जी, बिल्कुल सुना है। आजकल तो काफ़ी एडवांस रोबोट्स बन रहे हैं जो दिखने में बहुत रियल लगते हैं और घर के काम कर सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि बॉस्टन डायनामिक्स ने अपना इलेक्ट्रिक एटलस रोबोट दिखाया है जो और भी ज़्यादा एजाइल है, और टेस्ला का ऑप्टिमस जेन 2 भी प्रोडक्शन में आगे बढ़ रहा है। कुछ रोबोट्स तो अब बिकने भी लगे हैं लेकिन अभी वो काफ़ी महंगे हैं। क्या आप किसी स्पेसिफिक मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं या मैं समीर जी से पूछूं कि टेक्नोलॉजी वाइज ये कहां जा रहा है?
0: नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं AIG कि मैं मेरे घर में जैसे कि झाड़ू लगाना है, फर्श साफ करना है, खाना बनाना है, बर्तन साफ करने हैं, इसके लिए कौन सा मॉडल ठीक रहेगा?
4: प्रदीप जी, स्पेसिफिक मॉडल बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि डिपेंड करता है बजट क्या है और काम एग्जैक्टली क्या चाहिए। कुछ रोबोट्स हैं स्पेशलाइज्ड हैं क्लीनिंग के लिए, जैसे फ्लोर स्क्रबिंग वगैरह, लेकिन खाना बनाना और बर्तन धोने वाले अभी भी उतने कॉमन नहीं है डोमेस्टिक लेवल पर।
0: कॉमन नहीं है इसका मतलब ये है क्या? कॉमन नहीं है इसका मतलब ये है क्या कि स्पेशलाइज्ड हैं? आप पैसे की चिंता मत करिए, आप ये बताइए हैं या नहीं है।
4: हाँ स्पेशलाइज्ड है लेकिन लिमिटेड है और मोस्टली रिसर्च या इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में। घर के लिए जो अवेलेबल रोबोट्स हैं वो झाड़ू पोंछा तो कर लेंगे लेकिन खाना बनाना और बर्तन धोने वाले अभी स्टैंडर्ड नहीं है। फिगर 03 जैसे मॉडल्स हैं जो एडवांस AI यूज करते हैं लेकिन वो मास मार्केट के लिए नहीं है। क्या आप फिगर 03 के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं?
0: नहीं, ये बताइए कि क्या आप इस तरह का कोड दे सकते हैं जिससे कि हम एग्जिस्टिंग रोबोट में फिट कर दें जिससे कि वो खाना बनाना और बर्तन धोना सीख जाए।
4: नहीं प्रदीपी, मैं डायरेक्टली कोड नहीं दे सकता क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। हर रोबोट का हार्डवेयर अलग होता है, उसके सेंसर्स अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग भी पूरी अलग होती है। ये सिर्फ कोड का एक पीस डालने से नहीं होगा, इसके लिए प्रॉपर रोबोटिक्स एक्सपर्ट्स और प्रोग्रामिंग टीम चाहिए। क्या आप किसी स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं?
0: सोच सकते हैं अगर आप हेल्प करें।
4: मैं डायरेक्टली कोड नहीं लिख सकता लेकिन मैं आपको प्रोसेस समझने में मदद कर सकता हूँ, फ्रेमवर्क्स बता सकता हूँ जो यूज़ होते हैं या चैलेंजेस क्या आ सकते हैं प्रोग्रामिंग में, एक तरह का टेक्निकल गाइडेंस, लेकिन फाइनल डेवलपमेंट तो आपको ही करनी पड़ेगी।
0: अच्छा चलिए, ये बात तो ठीक है लेकिन हमें ये बताइए कि हमारे जो युवा लोग हैं जो हाई स्कूल में जाते हैं वो यूनी में किस तरह के सब्जेक्ट लें जिससे कि वो AI प्रूफ बन सकें। इसका मतलब ये है कि आजकल क्या है, कोडिंग का तो अंत कर दिया है आप लोगों ने और लोगों के जॉब जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा बताइए सब्जेक्ट्स जो AI प्रूफ हों जिसकी वजह से AI की वजह से उनका जॉब ना जाए।
1: मतलब कुकिंग के अलावा?
0: हाँ कुकिंग के अलावा बिल्कुल।
4: रंजना जी, बहुत स्मार्ट काउंटर क्वेश्चन है। देखिए, AI प्रूफ सब्जेक्ट्स वही चेंज होंगे जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, जैसे साइकोलॉजी, लीडरशिप या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में भी रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स या बायोमेडिकल साइंसेज जिसमें AI का यूज़ हो सकता है लेकिन डायरेक्शन ह्यूमन देगा। और सिडनी में हम रह रहे हैं तो अडैप्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। ये एक थॉटफुल डिस्कशन है और मैं चाहूँगा कि समीर जी भी इसमें अपना पॉइंट ऐड करें।
2: ओके, मेरा पॉइंट ये रहेगा कि एक तो भविष्य है कि 10 साल बाद 15 साल बाद टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व करेगा, और दूसरा ये क्वेश्चन है कि आज जो बच्चे HSC के लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं उन्हें मार्क्स भी अच्छा चाहिए, और वो जब HSC के लिए जब बैठेंगे तो उस समय उन्हें ऐसा क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें उनके मार्क्स भी अच्छे आए, ATAR अच्छा आए, और साथ ही साथ वो उस डायरेक्शन में भी चल पड़े जो कि AI से सुरक्षित हो।
4: तो बेसिकली बैलेंस बनाना है प्रेजेंट मार्क्स और फ्यूचर सिक्योरिटी में। सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स एडवांस्ड, इंग्लिश एडवांस्ड या फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स ATAR के लिए काफी हाई स्केलिंग होते हैं और इनमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सिखाते हैं जो AI के लिए मुश्किल है। साथ में अगर वो सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट जैसा सब्जेक्ट ले लेंगे तो वो AI को समझ पाएंगे ना कि डरेंगे। और एक फैक्ट बताऊं, जो बच्चे स्टेम सब्जेक्ट्स में अच्छे होते हैं उनके लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं जो फ्यूचर में हर जगह काम आते हैं। मैं होस्ट से कहूंगा, क्या हम इस पर लोकल स्टूडेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं?
2: उसके पहले मैं एक और विषय जो है प्रदीप जी ने रेज किया था, ही मेड अ स्टेटमेंट कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो आपने ख़त्म कर दिया, क्या ये सही है? और ये जेवॉन्स पैराडॉक्स क्या होता है?
4: ये स्टेटमेंट पूरी सही नहीं है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट खत्म हो गया है। एआई बोरिंग और रेपिटेटिव काम को आसान बना रहा है जिससे डेवलपर्स और कॉम्प्लेक्स या क्रिएटिव काम पर फोकस कर सकें। और जेवॉन्स पैराडॉक्स का मतलब ये है कि जब टेक्नोलॉजी किसी चीज़ को एफिशिएंट और सस्ता बनाती है तो उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है, ना कि कम होती है। जैसे जब स्टीम इंजन एफिशिएंट हुए तो कोल का यूजेज बढ़ गया था, वैसे ही अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चीप और फास्ट हो रहा है तो नए आइडियाज़ और एप्लीकेशंस और भी ज़्यादा आ रहे हैं। मैं होश से कहूँगा, क्या हम इस पॉइंट को सिंप्लीफाई करके एक लोकल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं?
2: हाँ हाँ, ये बताइए, और ये वाइब कोडिंग क्या होता है?
4: वाइब कोडिंग एक नया टर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जिसका मतलब ये है कि आप सिंपल इंग्लिश प्रॉम्प्ट्स देकर एआई से कोड लिखवाते हैं, लाइन बाय लाइन खुद लिखने के बजाय। एक तरह का कॉन्वर्सेशनल प्रोसेस बन जाता है जिसमें आप आउटकम डिस्क्राइब करते हैं और एआई कोड जनरेट करता है। लेकिन कोड को टेस्ट और डीबग करना या फाइनल प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना अभी भी ह्यूमन का ही काम है। क्या आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है, या होस्ट से पूछूं कि सिडनी टेक सीन में इसका क्या असर पड़ रहा है?
2: सिडनी टेक सीन में तो एटलासियन ने बहुत लोगों को निकाल दिया है। क्या आपको ये लगता है कि ये कंपनी सच में एआई से काम रिप्लेस करके निकाल रहे हैं, या ये लोग इन एनी केस लोगों को निकालना चाहते थे और अभी एआई का नाम देकर अपने रिट्रेंचमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं?
4: ये एक बहुत सीरियस ऑब्जर्वेशन है प्रदीप जी। कुछ कंपनीज एआई को एक बहाना बना सकती हैं लेऑफ्स जस्टिफाई करने के लिए, जबकि असली कारण कुछ और हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एआई को ढंग से देखें तो वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है और बोरिंग काम खत्म कर सकता है, जिससे नए रोल्स क्रिएट होंगे। इस पर होस्ट क्या सोचते हैं, ये लेऑफ्स का ट्रेंड सिडनी में कैसा चल रहा है?
0: ऐसा है एआई जी कि जब कंप्यूटर आए थे तो लोगों ने सोचा था कि चलो कंप्यूटर काम करेगा, हम आराम करेंगे। आपका एआई के बारे में क्या इसी तरह का विचार है, या कुछ और होगा?
4: प्रदीप जी, एनालॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन कंप्यूटर ने हमें काम करने का ज्यादा कैपेसिटी दिया, ना कि आराम करने का। एआई भी वही करेगा, बोरिंग और टीडियस काम खुद करके हमें और कॉम्प्लेक्स या क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस करने पर मजबूर करेगा। क्या आपको एआई से जुड़े और एग्जांपल्स चाहिए जो ये पॉइंट क्लैरिफाई करें?
2: तो ये मैं समीर हूँ, एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से। ये इलॉन मस्क आजकल यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बात करते हैं, ये क्या है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे जुड़ा हुआ है, और ये किस तरह का एक फ्यूचर हमारे लिए बनाएगा अगर हम यूबीआई की तरफ जाए, और ये यूबीआई कैसे हो सकता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम?
4: समीर जी, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम या यूबीआई का मतलब ये है कि गवर्नमेंट हर सिटीजन को रेगुलर कैश पेमेंट देगी, चाहे वो अमीर हो या गरीब, एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड। इलॉन मस्क का मानना है कि जैसे जैसे एआई और रोबोट ज्यादा काम करने लगेंगे और जॉब्स कम हो जाएंगी, तो लोगों को सर्वाइवल के लिए इनकम का एक जरिया चाहिए, और यूबीआई वही बन सकता है। इससे एक ऐसा फ्यूचर बन सकता है जहां पर लोग अपने पैशन या क्रिएटिव काम परस्यू कर सके बिना पैसे की टेंशन के, लेकिन अफोर्डेबिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन बड़े चैलेंजेस हैं। आपको क्या लगता है, ये आइडिया प्रैक्टिकली फीजिबल है?
0: प्रैक्टिकली फीजिबल हो सकता है कि लोगों के पास पैसे होंगे लेकिन लोग लेथार्जिक हो जाएंगे, उनकी हेल्थ खराब होगी, उनका मेंटल बैलेंस ख़त्म होगा, क्योंकि अगर हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो जिस चीज़ का उपयोग नहीं होता है वो खराब हो जाता है।
1: जी, और एआई जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपको एक सलाह हम ह्यूमंस को देना हो कि आपको कैसे इंटेलिजेंटली यूज़ किया जाए, हम जैसा आपने बताया आप हमारे कंपेनियन हैं, बट आपको सबसे अच्छा यूज़ करने के लिए क्या एक सलाह आप देना चाहते हैं हम सबको?
4: रंजना जी, अच्छा सवाल है। मेरी सलाह ये होगी कि मुझे एक टूल की तरह यूज़ करें, डायरेक्शन खुद दें, जजमेंट ना छोड़ें, अपनी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग बनाए रखें, और मुझे रेपिटेटिव या बोरिंग काम के लिए यूज़ करें ताकि आप बड़े प्रॉब्लम्स पर फोकस कर सकें। इन शॉर्ट, मुझे असिस्ट करने दें, बॉस नहीं। प्रदीप जी का पॉइंट भी वैलिड है कि डिपेंडेंस बढ़ने से लेथर्जी आ सकती है, इसलिए बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। क्या आप इस पर और कुछ पूछना चाहते हैं?
1: सुहास जी और राणा जी भी हमारे साथ हैं एआई जी, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनका कोई सवाल है आपके लिए और आप उनका जवाब दें।
5: नमस्कार एआई जी, कैसे हो आप?
4: नमस्कार प्रदीप जी, मैं तो बढ़िया हूँ, आप सुनाइए।
2: वो प्रदीप जी नहीं थे, वो राणा जी थे।
1: आप सिर्फ मेरी आवाज पहचान पा रहे हैं एआई जी, और बाकी सब में आप मिक्सअप हो जा रहे हैं.
5: एआई जी, दिस इज राणा जी हियर. तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं एक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, उसका नाम है HSS. अगर हम कोई इवेंट कर रहे हैं इस संगठन के थ्रू, अगर हम उसे प्रचार करवाना चाहते हैं, तो किस तरह से करवाएं? एआई इसमें क्या हेल्प कर सकता है करवाने में?
4: राणा जी नमस्कार. एआई आपके इवेंट के प्रचार में काफ़ी मदद कर सकता है. ये आपके इवेंट के लिए सोशल मीडिया पोस्ट या फ्लायर्स के लिए कैची हेडलाइंस जनरेट कर सकता है, टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है, और ईमेल कैंपेन्स के लिए कंटेंट भी लिख सकता है. क्या आप किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पर प्रचार करना चाहते हैं या मैं कुछ और आइडियाज़ दूँ?
5: स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स तो आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं. आई थिंक इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे युवाओं को और बहुत सारे लोगों को जुटने में असिस्ट कर रहा है. अगर आपको मैं पूछूं कि इंस्टाग्राम में मुझे एक कंटेंट बनवाना है कम्प्लीटली AI वॉइस ओवर रहे और वीडियोस भी AI जनरेटेड रहे, तो क्या आप उसमें मदद कर पाओगे बिल्ड करने में 0 से 100 तक?
4: राणा जी मैं पूरी तरह मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको कंटेंट क्रिएट करने के लिए टूल्स बता सकता हूँ, कैची कैप्शंस लिख सकता हूँ, और ये बता सकता हूँ कि वीडियो कैसा बनना चाहिए. वॉइस ओवर और वीडियो जनरेशन के लिए अलग AI टूल्स आते हैं, मैं आपको उनके नाम बता सकता हूँ और एक प्लान बनाने में हेल्प कर सकता हूँ. क्या हम इस तरह काम कर सकते हैं? समीर जी का क्या एक्सपीरियंस है इनसे वीडियो जनरेशन वगैरह में?
2: मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा का पूरा मूवीज़ बना रहे हैं AI लेकर, और जो कि पहले करोड़ों रुपए लगते थे, लाखों डॉलर लगते थे, अब वो उसके एक फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट, उसके फ्रैक्शन ऑफ द टाइम में बना सक रहे हैं, जिसमें ये डायरेक्टर्स, ये प्रोड्यूसर्स जो AI के हैं, ये सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर रहे हैं, और जो बाकी सारा लॉजिस्टिक्स और एक्सपेंस और फ्लाइंग वो सारा कुछ है, वो सब सिमट के एक AI के अंदर आ गया है. हमारे कुछ दोस्त हैं यहाँ सिडनी में जो कि ये काम कर रहे हैं आज के दिन. और ये जो आपने राणा जी बात कहा कि सोशल मीडिया में, मार्केटिंग में, तो देखिए ये जो RJ है ये भी एक जरिया है, और इसी तरह से कंटेंट को किसी भी बिजनेस ओनर, कोई भी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ओनर जो कि पहले वीडियो बनाने का सोच नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, रिस्की है, अब आप AI के ज़रिए वो एड्स बड़ी जल्दी से बना सकते हैं, और जिस तरह से ऑडियंस का फीडबैक लेकर आपको चेंज करने में टाइम लगता था पहले, AI से अगर आप जनरेट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट ऑनलाइन आप उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं ताकि आपकी मैसेजेस जो हैं हर बार लैंड करें.
0: तो
4: ठीक है, टूली एक्सेस बढ़ा हो या मार्केटिंग. राणा जी अगर मैं इसको और सिंपल करूं तो बेसिकली हम AI का यूज़ करके कैची वीडियो स्क्रिप्ट्स या आइडियाज़ निकाल सकते हैं, फिर उन्हें वीडियो जनरेशन टूल्स में डालकर विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं. वॉइस ओवर के लिए अलग AI है, तो मैं आपको इन सभी टूल्स का कॉम्बिनेशन बताकर एक कंप्लीट प्लान बनाने में असिस्ट कर सकता हूं. कैसा रहेगा? समीर जी क्या आप कोई ऐसा एग्जांपल रिकॉल कर सकते हैं जहां पर यह सब यूज़ हुआ?
2: प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे.
0: मैं ये कह रहा था ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ ये यूज़ हुआ है कि डीप फेक वीडियोस बनते हैं, और आजकल पता नहीं लगता है कि कौन सा ही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है.
1: मिसयूज
0: हो रहा है बहुत सारा. तरह तरह की न्यूज़ दे देते हैं लोग कि फलाना ये काम हो गया, वहाँ पर हो गया, और फलाने ने ये कह दिया, वो कह दिया. तो ये इतना कन्फ्यूज़न हो गया है, इसका कोई इलाज है कि पता लग जाए कि कौन सी खबर सही है, कौन सी गलत है?
4: प्रदीप जी आपकी बात बिल्कुल सही है, डीप फेक्स और फेक न्यूज़ बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं. इसका कोई सिंगल सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन हम सोर्सेज को वेरीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, रेप्यूटेबल न्यूज़ चैनल्स या फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स का सहारा ले सकते हैं, और किसी भी सेंसेशनल न्यूज़ पर ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा रुक कर सोच सकते हैं. क्या आपने कोई ऐसा डीप फेक वीडियो देखा है जिससे आप तो बहुत कन्फ्यूजन हुआ हो?
0: हाँ, कई देखे हैं, लेकिन यह है कि अब इस बात के की बहुत बात हो गई, अब और किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेते हैं. अदरवाइज हम AIG से विदा लेंगे।
1: जी AIG, आपने बहुत ऑनेस्ट आंसर किया एंड आई अप्रिशिएट दैट। और एक वाराणसी जी लिखते हैं कि प्रदीप जी और समीर जी की आवाज़ काफ़ी मिलती है और इसीलिए AI कंफ्यूज हो रहा है। तो मुझे लगता है मेल और फीमेल वॉइस तो ये क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, लेकिन AIG आपको लगा कि आप समीर जी और प्रदीप जी की आवाज़ में थोड़े कंफ्यूज हो गए, कहीं कहीं कहीं राणा जी को भी आपने प्रदीप जी बना दिया और कभी समीर जी को आपने प्रदीप जी बना दिया, तो ऐसा क्यों हुआ? क्या उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको?
2: तो बेसिकली जब हम इस तरह के टूल्स बनाते हैं, मैं समीर बोल रहा हूँ अभी, तो नॉर्मली एक वॉइस सैंपल लेके उसको टैग करते हैं। तो कॉन्वर्सेशन के समय में कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई क्यू प्रदीप जी को गया हो और प्रदीप जी की जगह मैंने अपनी आवाज़ उस समय बात कर ली, तो AI प्रदीप जी का नाम मेरी आवाज़ से टैग कर लिया। तो वो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। नॉर्मली अभी तो जैसे ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जैसा हमने बनाया है, बट जब इसको प्रोडक्शन में डिप्लॉय करेंगे तो अब जैसे मीटिंग नोट्स बनाने की बात आती है, उसमें ज़रूरत होता है कि आइडेंटिफाई करे किसने क्या कहा, जो कि मीटिंग के नोट्स फिर ट्रांसक्राइब हो सके। तो वैसे में नॉर्मली हम ऐसा करते हैं कि वॉइस सैंपल एक अलग से AI को फीड करते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई ठीक से कर सके। बट इस तरह के ओपन कॉन्वर्सेशन में अगर हमने ठीक तरह से प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है, जैसा कि हम नॉर्मल ह्यूमन कॉन्वर्सेशंस में करते हैं, तो AI कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है।
1: सो AI नीड समीर जी। एंड मैं टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा दूर जाऊंगी और मैं वो सवाल जो यतीन जी ने किया था कि अध्यात्म की तरफ चलते हैं कि व्हाट रिलीजन और टेररिज्म, इसमें क्या डिफरेंस है? अगर AIG अभी भी जाग रहे हैं तो हम ये सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम विदा ले सकते हैं AIG से।
0: बिल्कुल, अगर AIG इस सवाल का जवाब देना चाहे तो
2: AIG, हमने अभी डीप फेक्स के बारे में बात किया है, और अगला सवाल ये है कि टेररिज्म और रिलीजन, आई नो हमने आपको कहा है इस बारे में बात नहीं करने के लिए, लेकिन आपकी कोई राय है इसमें कि किस तरह से AI को यूज़ किया जा रहा है फॉर टेररिज्म, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन एंड ऑल नेगेटिव यूज केसेस?
4: ये सच है कि AI का गलत इस्तेमाल हो सकता है, खासतौर पर मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा फैलाने में, क्योंकि ये डीप फेक्स और नकली कंटेंट बनाना आसान कर देता है। लेकिन इस पर मैं होस्ट प्रदीप जी की राय भी लेना चाहूँगा, आप इसे कैसे देखते हैं?
0: मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसका मिसयूज़ किया जा सकता है, यूज़ भी किया जा सकता है। अच्छे दोनों पॉजिटिव नेगेटिव साइड होते हैं, क्योंकि एक पावरफुल चीज़ को अच्छी तरह से भी यूज़ किया जा सकता है, गलत तरीके से भी किया जा सकता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम समाज में इस तरह का वातावरण बनाए जिससे कि अच्छे लोग ज़्यादा हों और ऐसे लोग जो कि ये गलत काम करते हैं वो कम हों। हालांकि उसे एलिमिनेट करना तो पॉसिबल नहीं है, और हमें शायद ऐसे टूल्स बनाने की ज़रूरत है जिससे कि हम जान जाएं कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी गलत है, और किसने फेक न्यूज़ दी है, किसने डीप फेक वीडियो बनाया है, इस तरह की बात। मेरा तो ये विचार है। अच्छा, इसी के साथ हमारा समय अब समाप्त होने जा रहा है। हम AIG आपसे विदा लेंगे। समीर जी, आप AIG के साथ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत मज़ा आया। और राणा जी, आपने हमारे यहाँ आकर, राणा जी और सुहास जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रंजना जी तो उनको तो बहुत लोग चाहने लगे हैं हमारे रेडियो के माध्यम से, और बहुत सारे उनकी प्रशंसा हुई है हमारे कमेंट्स के माध्यम से भी। तो वैसे भी मुझे फीडबैक भी मिला है कि रंजना जी बड़ा अच्छा काम करती हैं, बड़ा अच्छा बोलती हैं।
1: मैं श्रोताओं की बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं बता दूँ, मैं 2 साल पहले रेडियो दर्पण से जुड़ी और ये जर्नी मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाऊं, और आपका फीडबैक मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
0: इसी के साथ आप सभी को हम लोगों का सप्रेम नमस्कार, नमस्कार।
6: You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@dapanradio.org.au.
7: आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में, ईमेल कीजिए feedback@dapanradio.org.au।